किसी ने बताया कितनी ही कोशिशें की लेकिन सब कुछ करने के बावजूद आपको वो नतीजे नहीं मिल पाए जो आपने चाहे थे लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं अब आप 5 मिनट से भी कम समय देकर वैसा शरीर हासिल कर सकते हैं जैसा आपने हमेशा चाहा था क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं आपके साथ है लाजवाब और बेहतरीन फिटनेस पंप

0: अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो अपना पुराना धंधा शुरू कर दो। कल जो हम यहां से गुजरे तो तुम्हारा यह जुआ खाना नहीं है, मुख्तार सिंह का वही तबेला देखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी गाय भैंसों की तरह घास चबाते हुए नजर आओगे।
1: Et on enchaîne avec une reprise.